राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठौ नंदन प्रथम राग पहरो वह करही पंच रागनी संग उचरही।

द्वितीया माल का सकाला पहे संग रागनी पांचौथा पहे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनाश्री ए पांचौ गाई माल राग का सक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड का सक उभारा खौ खटवा पहरानद गाए अष्टमाल का सक

जी की फतेह। गज गज करग जावे सोनिहाल हो जावे। सत श्री अकाल गुरबर अकाल देग तेग फतेह खालसे पंथ दी दिना।

0: सगल द्वार को छाड़ के गह द्वार उद्वार बाहे भे के लाज सो गोविंद दास वार दोहरा
1: राज करेगा खालसा की रहन को खुआर हो समझ में बच्चे सुन जो दोरा उनके सभा मरीज की करकुरा पासा।

देहु राम सीत सोई पूजा औ निवाज योई मान सब एक पय अनेक को प्रमाओ है। देवताया देव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भीष को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक

न्यारे न्यारे होए कै फिर आगमें मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनुका फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग को डूबजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। केते काछ मच केते उनको करत पछ, केते अछ वछ हुए सपछ उड जाहेंगे। केते नव बीज अच पच को करेंगे पछ, केतक प्रताच हुए पचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जो अतेज मैं अतेज जैसे तेज लीन, ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत केते रोवत मरत, केते जल मैं डुबत, केते आग मैं जरत है, केते गंग वासी, केते मदीना मकान वासी, केत के उदासी के प्रमाए ई फिरत है। करवत सहत केते भूम मैं गडत, केते सुआ पे चढ़त, केते तू को परत है, ज्ञान मैं उडत, केते जल मैं रहत, केते ज्ञान के विहीन जग जारे मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानो बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे जापसी। कस हारे चंदन लगाए, हारे चुआ चार पूज हारे, पाहन चढ़ाए हारे लापसी। गाह हारे गोरन मनाए हारे, मड़ी मट लीप हारे, पीतन लगाए हारे शापसी। गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर साब, पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी। तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद, न रागंग न रंगंग न रूपंग न रेघंग न मोहंग न क्रोहंग न द्रोहंग न द्वैखंग न कर्मंग न भर्मंग न जन्मंग न जातंग न मित्रंग न सतरंग न पितरंग न मातंग न नेहंग न गेहंग न कामंग न तामंग न पुत्रंग न मित्रंग न सतरंग न पामंग न लेखंग भेखंग योनि।

ఖంగ నమోహంగ నమాతంగ నకర్మంగ నపరమంగ నజన్మంగ నజాతంగ అద్వైఖంగ అపేఖంగ అజూనీ స్వరూపే నమో ఏకరూపే నమో ఏకరూపే పరేం పరాపరం ప్రజ్ఞా ప్రకాశీ అచేతంగ ఛాయాద్ అద్వయ వినాశీ నజాతంగ నపాతంగ నరూపంగ నరంగే నమో ఆద అపంగే నమో ఆద అపంగే किते कृष्ण से कीट कोटा उपाय उसारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अप है आद अद्वय विनाशी परंपरा परम पूर्ण प्रकाशी ना आधंग ना व्याधंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रतावाद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरनंग न भरनंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग स नेहंग स नाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाते न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सपूते पविखे पवने अचित्रे नारायण नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग अभूतंग अभेखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदैव सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अजया दद्वय अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न बरनंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग अव निर्भिघातंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अपंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न परमंग न पायंग न रूपंग न पूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न पेधंग न परमंग न सदैवंग सदा सिद्ध प्रदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभाद अनुक्तंग अत प्रतापे अजुक्तंग अचय आद अविक्त यथापे विभुक्तंग अचय आद अचय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न सोगंग न सागंग परियंग पवित्रंग पुनीतंग अतागंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न परमंग न सर्मंग न साके न परमंग न चर्मंग न कर्मंग न बाके न सत्रंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे कहूं कंज के मंज के परम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेस के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अज्र के पज्र के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हर्म जाने कहूं धर्म के कर्म के परम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दोखं कहूं औषधि रोग के सोख सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साधकी तामसी हो कहूं योग विद्या तरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं परम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच बिंद विद्या तरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम पानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सार कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चाय शिष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावै कहूं बैठ कुरान के गीत गावै कहूं सुत सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आर बीता तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पश्चवी संस्कृति हो कहूं देश पाख्या कहूं देवबानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतंग कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेच्छ पाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागबानी कहूं गारुड़ गुड़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूं छैल छाला तरे छत्रधारी कहूं राज साजंग तिराजा तिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अक्षय आदत्वै विधाता न त्रस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग त्वस्तंग भूते त्व प्रसाद पादड़ी छंद अभ्यगत तेजन भव प्रकाश अच्छा स्वरूप द्वय नादन तुट तेजन अनखुट भंडार दाता तुरंत सर्वंग प्रकार अनभूत तेज अनचिज गात करता श्री सदीव हरता सनादास न डोलन भूत कर्म दाता दयान अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र प्राद नहीं मित्र मा जय कर्म परम

रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं परम भेख, जय कर्म भरम नहीं जात पात, नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम ताम नहीं परक ब्याह, जय रोग शोक नहीं सत्र साध, जय त्रास वास नहीं देह नास, जय आद्यंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास यास नहीं भूम भुगत, जय काल ब्याल कट्यो न अंग, अच्छा स्वरूप अखै अपंग, जय नेत नेत उचरंत भेद, जय अलख रूप कथत कतेब, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अच्छा अतोल, जय ध्यान काज मुन जन अनंत, कई कल्प जोग साधत दुरंत, तन सीत काम बरखा सहंत, कई कल्प एक आसन बितंत, कई जतन जोग विद्या विचार।

कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कहीं सिमरत शास्त्र उच्चरत सो कर्म निवली आद कर्म कहूँ हस्तदान कहूँ अश्व मेध मको बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्धचार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमरत उचार कहीं भजत एक

पस सर्व जलेर तलंग धन चरत इंद्र कुमेर पलंग अनखेत स्वरूप भेद भयंगन खंड भूत छेद छयंगन काल पाल दयाल स्वंग जय ठटियंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचियंग देव अदेव परंग सबकीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मका जय राग ना रूप ना रेख रुखंग जय ताप ना साप ना शोक सुखंग जय रोग ना शोक ना भोग भुयंग जय खेद ना भेद ना छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचियंग छत्री छत्र छतंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैग न दाग न दो गणंग जय अंड ते ब्रह्मण रचियो दश्चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज तेज की वन पौपदया प्रचंड लियो श्रिय सिंदर बिंद नगेंद नगंग श्रिय जच गंधर फणंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नरपाल कराल त्रगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सीतज उत भुजंग कई देव देव सराध पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न प्रात सतंग जय रोग न सोग न भोग भुवंग जय जंपै किन्नर जच जुवंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाजर तादक पाद गणंग भव भूत भवेक भवान तवंग जय अंडज तीरज जय अंडज सीतज जीर रजंग रच भूम आकाश पताल जलंग जय पा रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भूव मेरे आकाश निवास छितंग रच रोज अकादश चंद्र व्रतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खांडे खंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर्दश्चार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे अनतूत अभूत अछूत मतंग अनगाद अभ्याद अनाद गतंग अनखेद अभेद अछेद नरंग जहर चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग ना रंग ना रेख रुगंग जय सोग ना भोग ना जोग जुगंग भुव भंजन गंजन याद सिरंग जय बंदत देव अदेव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मन माणक मोती लाल सुचे अनभंज प्रभा अनगंज प्रतंग जय पारण पावत पूर्मतंग अनखंड स्वरूप अंड प्रभा जय जम

कह न संग है न साथ है न दुख है न दाग है न द्वैग है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंक है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साहू है न साहक कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेग है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेग है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अपेक है न तात है न मात है अख्याल अखंड रूप है अक्षेद है अपेद है न रंग है न पूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अपंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न पंड है न अंग है न रंग है न संग है न साध है न प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमाद है न सीत है न सोच है न क्राम है न काम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र।

है नपाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अपंज है भरम है भूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है भूता भेघ है बलिया रूप राग रंग है न द्वैग है न पीघ है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिन्ह वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानी है भूत अपिज है सदा चिज तेज मानी है न आद है न ब्याद है अगाध रूप लेखी है दुख है दाग है अच्छा प्रताप पेखी है न कर्म है न परम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाओ है न छल है न छिद्र को स्वरूप है

न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोह कार है, न याद है, न गाद है, न ब्याद को विचार है। न रंग राग रूप है, न रूप रेख रार है, न हाव है, न पाव है, न ताव को प्रकार है। गजाधपी नराधपी करंत सेव है, सदा सितुष्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा। अगस्त याद जे बड़े तपस्पति बसेखिया, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिया। अगाध याद देवगी अनाद पात मानिया, न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिया। सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल मैं रहा तुरंत।

दामनी प्रहासन सोचा बनवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़ गति रक्ता सुरियाचन युद्ध परमाचन निर्दय नराचन धर्म वृत्ति श्रोणंते अचिंती अनल बेवंती जोग जयंती खड़ग तरे जय जय हो सी मैं खास मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगयोग निवारण दुष्ट प्रचारण सृष्टि उपारण शुद्ध मते फणी अर्पण कारण बाघ बकारण सत्र प्रहारण साध मते सैथी स्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल पान तेज तुलंग जय जय हो सी मैं खास मर्दन भूम आकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चिचुर हारण धूम तुकारण द्रप मथे दाड़वी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गुड़ कथे करणम करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतिजन अष्ट पुजे जय जय हो सी मैं कासुर मर्दन परम विनाशन धर्म तुझे घुंगरू घमंकण सत्र जमंकण फणियर फुंकारण धर्म तुझे अष्टाड प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाहे शुद्ध स्नाहे अगमथाहे एक प्रति जय जय हो सी मैं कासुर मर्दन आद कुमार अगाध प्रति सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन पृष्ठ विनाशन मृत मते कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहन वितलतले जय जय हो सी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाश अनले संकटी निवारण अधम उधारण तेज प्रकरखण तुंद दबे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अछे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापन जपत जीवे जय जय हो सी सस्त्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच सरे करकसा कुठारे नर्ग निवारे अधम उधारे तूर पुजे दामनी दमंके गेहर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय हो सी रगता सुर खंडन सोम्भ चक्रत ने सोम्भ मथे बारज बिलोचन ब्रतन बिमोचन सोच बिसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुभ रुसपासे दुष्ट क्रसे चंचला प्रियंगी बेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी मैं खासर मर्दन आद अनाद अगाध उर्दंग खंड का बिराजा रुण जुण बाजा ब्रह्म भाजा सुन सुरंग कोकल सुन लाजा किल विक भाजा सुख राजा माधु रंग दुर्जन दल दजा मंदन रजा सबैन भजा रोह रंग जय जय हो सी मैं खासर मर्दन चंड चकर तन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोस

कई उच नीच कीनो बनाव सब वार पार जाको प्रभाव। सब जीव जंत जानत जाहे मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत। कई पलट सूरज सिजदा कराहे प्रभु एक रूप द्वै कै लखाहे। अनछिज तीजन भय प्रकार।

पंजनाथ जल तल प्रभाव सर्वद्र साथ। जय जात पात नहीं पीत परम, जय रंग रूप नहीं एक धर्म, जय सत्र मित्र नहीं, जय सत्र मित्र दो एक सार। अच्छा।

कारण स्वरूप जय चक्र चिन्ह रूप रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल जब जीव जंत की करत पाल और दंग बिरहत से दंग स्वरूप दंग पाल जुदंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग छिज तेजन भिज अदाग जल थल मही बंतन दुरंत जय नेत नेत निस्दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पानहार जय कोट कई कोट

धारे रेस बिर कर पेश तबोधन के धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे पुन्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम से धारे तो प्रसाद कबित अंतर के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियों के चलैया मां चतरण के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया वसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया मां बुद्ध के दिवैया महामान हूं के मान है ज्ञान हूं के ज्ञाता मां बुद्धता के दाता देव काल हूं के काल महाकाल हूं के काल है पूर्वी न पार पाव हिंगला हिमालय ध्याव गौर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साध पौन साधना कतेक पाद अरब के अरबी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी मान कंधारी कुरेसी जान पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है मरहटा मघेल तेरी मान सो तपस्या कर दृढ़ वत लंगी पहचान धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा मैं चलता है रोह के रोहेले माग देश के मंगेल वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीश न्यावे तिबती त्याय दुख देह को दलत है जिन्हें तु त्यायो तिन्ह पूरन प्रताप पायो सर्ब तन धाम फल फूल से फलत है देव देव दान को सुरेश दान मान को महेश गंग धान को अभेश कही अत है रंग मैं रंगीन राग रूप मैं प्रवीण और काहू पैना दीन साध दीन कही अत है पाई है न पार तेज पुंज मैं अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कही अत है हाथी की पुकार पल पाच पहुंचत ताहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनी अत है केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कही अत है केते सस राशि केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दही अत है केते महादीन केते ब्यास से प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जच कही अत है कर करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताहीं ते अपार निराधार लही अत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पय का पार कै बखानिया अद्वै अविनाशी परन पूरन प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी कह कह मानिया जंत्र हूं न जात जाकी बाप हूं न माए ताकी पूरन प्रभागी सो छटा के अनमानिया तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह कह जानिया तेज हूं को तर है के राजसी को सार है के शुद्धता को कार है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है वृक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप

सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छा विनाशी है काम को कुलिंदा है के खूबी को देहंता है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हो के काल है के सतरण के साल है के मित्रण को पोगत है के वृद्धता के पासी है जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को पास है के बुद्ध हूँ को कर है देवन को देव है निरंजन अपीव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है मान को दिवैया है जम जाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महिपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को पर्ण है के अवदा को हरण के सुख को कर्ण है के तीज को प्रकाश है पाइये न पार पारावार हूँ को पार जागो की जत विचार तो विचार को निवास है हिंगला हिमा लगावे हबसी हलबी त्यावे पूर्वी न पार पावाया सते नाश है देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन पिवनाथ अद्वैनाशी है पू अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग गो जोग है त्रैया द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्री के कूल के हंस निसी सिया रूम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी तहार चली सातु सिंध रूल के पारासी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नीके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोहियत है हिमा सी हिमालय हार हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी बलिंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान की मृदंगी तेरे गीत गाइयत है बखरी गंधारी गोर गखरी वृदेदाचारी पौन के हारी तेरो नाम तिहाइयत है।

पूर्व बलाऊ काम रूप यो कमाऊ सर्व ठौर मैं बिराजा जहां जहां जाई अत है पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र के अतापी नाथ कीरत तिहारी को ना पार पाई अत है तो प्रसाद पादड़ी छंद अद्वैन आसासन अडोल अद्वैन उपमा तो लच्छा स्वरूप व्यगत नाथ अजान भाव सर्पा परमाथ जह तह मही बन तन प्रफुल शोभा बसंत जह तह प्रडोल बन तन दुरंत सखाग मृग महान जह तह प्रफुल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल लह लहत मोर सिर टुर जान मन मत है चौर कुजरत कमाल राजक रहीम करुणा निधान कामल करीम जह तह बिलोक तह तह प्रसो आजा

प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहा हर जिन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मलै त्रिपतास है मिल संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भाग हीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए ध्रग जीव ध्रग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लखिया लखास धन धन सत संगत जित

काहे मन भाव करिया। ऊडे ऊढ़ आवे सैको सा तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया।

जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाना।

बिसरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते की जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा।

ऐताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जच्छन उपजायो आद अंत एक है अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकण को शिव गुण सुख दियो सत्रण को पल मोह पद कियो घड़ घड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी थे कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घड़ घड़ के पट पट की जान जा बुध करख करा कर तारा प्रजा धर तब देह अपारा जब आ करख करत हों कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हों जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी भूज उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निरलंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनमानत महा मूड़ कश भेद ना जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भिव आप आपनी बुद है जेती बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक है रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्वज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा हुए बैठा काहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तुत पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे अस दुज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छा छह सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तमै शरण तिहारी आप हाथ दैलिहु उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी अंपर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अजदुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशद फल पावे सोई दोख नात सह ब्याप

हो जोया कि एक बार चौपाई को कह चौपाई सम सत्रह सैस भणी जय अर्ध सैस भन तीन कह जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच चरित्र समापत।

हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो।

धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुना कब बाच दोहरा। ठाड़ भयो मैं जोर कर बचन कहा सुर न्याय। पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करो सुहाय दोहरा। जी जी तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याय है संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। तिन बिधियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय। सब सिखण को सुख दय जह तह भय सहाय दोहरा। ठीकर फोर दलीस सिर प्रापुर किया प्यान। तेग

अब रीज के देहो वह हमको जहां बिनती कर जोर करो जब आओ कि आओ निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरो दोहरा दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाय सवैया

आख तर नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुम री कर मना कहो सब तोहे बखान्यो।

सत्संगत जी फतेह प्रवान करना जी उचारो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर कृपा करो जी बुलंदबाजी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू बहुत सारे शब्द पढ़न वास्ते हुक्म होया। एक तो हुणे आनंदपुर साहब तो फोन आया कि परिवार बैठा है तो बच्चा जिहड़ा पिछले साल नाराज होया सी कि तुसी मेरा शब्द नहीं पढ़िया। मनी पाजी वो वेख भी रहे ने ते मैं कहिंदे बेटा दस्तार सजा के आया तो बैठा है उहदा शब्द जरूर पढ़ दे ते बैठा है नाल। मैनूं हुक्म होया सी कि पिछले साल जाप साहिब जी विचों कीर्तन कीता सी ते उस्ताद जी ने भी हुक्म कीता है कि वो जरूर पढ़ना है ते शब्द सारे आप जी ने बेंत दफा सरवण किए हुए ने ते मेरी बेनती है कि सारी संगत नाल कीर्तन करिए हाजरी लवाइए। सब आखो जी।

mit. मेरी बेनती है सारी संगत अगला शब्द पढ़न तो पहला मेरी बेनती है सब आखो जी

गुरु रूप सत्संग जीओ समा बड़ा सीमित है, 25 मिनट का समा है। मैं कल भी बेनती की सी कि आप जो संगत में जुड़ते हैं ना जतन करया करो कले शरीर करके हाजरी ना लगे, जतन करया करो सिर्फ शरीर करके हाजरी ना लगे, क्योंकि सतगुरां दी पावन बाणी का यह फरमान है, शब्द मरो फिर जीवो सद। एक बार शब्द दे विच जिहड़ा अभेद हो जाता ना वह फिर जन्म मरण के गेट के पार हो जाता। सतगुरु जी कहते किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी ना, सिर्फ एक किनका मात्र। जतन करते करते करते करते करते करते अरदास बेनती कराया करो कभी जीवन दे विच समा आ जाए जिस दिन शब्द आए किनका मात्र जिहड़ा ना साढ़े हिरदे घर विच वस जाए। और सतगुरां दे पावन स्थान ते जुड़ बैठे हाँ, मैं सतगुरां नूं हाजर नाजर जान के ये बेनती करदा। अरदास दे विच बड़ी ताकत है संगत जी, करदे करदे करदे करदे एक दिन गुरु साहिब जी उस समा लै आउंदे हन जिस दिन शब्द जिहड़ा ना किनका मात्र जी वह हिरदे घर विच वस जाए। असी सारे ने रल के जतन करना, यह पावन शब्द बड़ा सरल शब्द है, विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसण पाई है। जिन्हां दी याद विच जुड़ बैठे हो महान पुरख संत बाबा सुचा सिंह जी, उन्हां दी पावन सलाना मिठी याद नूं समर्पित करके सारे जुड़ बैठे हाँ। सारी संगत मन करके सुरत करके रसना करके शरीर करके हाजिर हो, सारे प्यार नाल कृपा करो जी।

अंधी रहत ज्ञान विओणी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे शिगार ऊचे कुल के वादा गावे जो दाका विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजय करे पिया।